0: पहले ये चीज है, तो उसमें आई थिंक ये मुझे इतना याद है 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में, तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था, इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है। रिकैपिटलाइजेशन तो होना था, रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था। इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, ये तो पहला बात है। और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जर्स, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है, तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है, और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
1: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
0: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हो एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को

0: जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक्स एक साथ आते हैं तो डिजिटाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है। तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमी इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कॉन्सोलिडेट हो जाते हैं और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कॉन्सोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
0: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का आज फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिटल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपोजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा होगी, एफसीएल में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का आपको पता है कि एफसीएल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 यूएस बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिस रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फास्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, AI का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं, और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटाइजेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोल रहा था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग। सो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो करंट जनरेशन था 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स में बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है, और ये प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

30 सितंबर हो गई है आज, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 92 डेज बचे हुए हैं। आपको एक बार फिर से ये कहते हुए कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। नमस्कार।

वादा तो ये भी था कि हम अपना बहुत ध्यान रखेंगे, वादा ये भी था कि हम अपने लिए और अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन अचानक से हमने ये पाया कि हम अपना ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो बन गया है हमारा मोबाइल। क्या खबर थी, क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन एक वादा आप अपने आप से कर सकते हैं और वो ये कि ये एक योजना है जिसके बारे में आप अगर जानिए तो फिर हो सकता है कि वो वादा आप पूरा कर सके। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की एक किफायती जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख का आर्थिक कवर देती है। आवेदक के पास किसी भी बैंक या डाकघर में चालू बचत खाता होना चाहिए। प्रीमियम की राशि हर साल 31 मई से पहले या उस दिन आपके बैंक खाते से अपने आप ऑटो डेबिट कर जाती है। तो फिर घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लॉगिन करें अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या फिर जो भी आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करते हैं उसमें जाइए, अपनी योजना को सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी योजना है, क्या है, किस तरह से है, और उसके बाद खाता और विवरण दर्ज कीजिए। वो बचत खाता चुनें जिसमें आप प्रीमियम कटवाना चाहते हैं। उसके बाद आपकी बुनियादी जानकारी जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, नॉमिनी है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा डिटेल जब लिख देंगे तो फिर भरिए और इस योजना का लाभ उठाइए। ये है म्यूजिकल दिल्ली की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:52:38। तो बात हो रही थी कि भाई हम अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखते हैं और उसके बाद जो चीज है जिसका हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं हमारा मोबाइल। देखिए कहीं इधर उधर तो नहीं बढ़ा।

अपनी इस दीवानी दिल को जरा दिखाइए तो सही, शहर और शहर के आसपास क्या कुछ हो रहा है बताइए जरा उसको। त्रिवेणी कला संगम में 11 तक आर्ट फेस्टिवल होगा। अपनी डायरी में आप इसको अभी से नोट कर सकते हैं। और ये चलो बचपन नाम का आर्ट फेस्टिवल 9 से लेकर के 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। सभी परफॉर्मेंस मुफ्त हैं, इसलिए इसके बारे में अभी से ही आप नोट करके रख लीजिए, इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। आईएसी में जाके देखिए, पेंटिंग एग्जीबिशन लगी हुई है, कलाकार है सदफ और ये बहुत प्यारी सी है, बड़ी काफी ब्राइट है। तो अपने आसपास नजर दौड़ाइए और देखिए शहर की खूबसूरती कितनी प्यारी है और वो हमें इनवाइट करती है। लेकिन इसके साथ साथ

अगर आप चाहते हैं प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं पे अपनी शिकायत दर्ज कराना तो 311 पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बजने वाले हैं 10, समय है ये समाचारों का। मिलती हूँ फिर से दिल का मेल बॉक्स में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि यह घटनाक्रम भारत के नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति GCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमरीका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमरीका के समकक्ष के साथ भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्चस्तरीय बैठक में भारत का यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के पहाड़ी इलाके में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेलों में साहिल जाधव और चिकिता तिनिपार्थी की भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने भी आज सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया। पहले मुकाबले में तन्वी खन्ना ने ओ योंग वाई लेन को हराया। इसके बाद अनाहत सिंह ने ओ एंग वोइन हान को शिकस्त दी। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल नागोया किंजो फुटो एरेना में होगा। भारत ने चीन, जापान और ईरान को हराकर पूल सी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुश्ती में पुरुषों के ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने आज ताजिकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान जोदा को पहले ही राउंड में 9-0 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। वहीं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को 238 के मुकाबले 234 अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत अब 7 स्वर्ण

0: finals. India duo also secured 2028 Olympic quota place with this win. They defeated Thailand in the semi-finals. President Draupadi Murmu today congratulated women's compound archery team on winning the gold medal. In a social media post, the president said that exceptional precision, composure and teamwork of the archers have made the nation proud. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग की सराहना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस रखने का निर्णय लिया। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुखों ने AI को विनियमित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। और भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जापान में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की यात्रा के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमेरिका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधी बातचीत जारी है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य पेश किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। उन्होंने घोषणा को लागू करने के लिए ठोस राष्ट्रीय नेतृत्व वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक संपत्तियों और विरासत को उनके मूल देशों में वापस लाने की सुविधा के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग की सराहना की है। श्री गुतरश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के अनुसार दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद, भारत संयुक्त राष्ट्र सहयोग और यूक्रेन में युद्ध तथा मध्य पूर्व की स्थिति सहित विभिन्न भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि वार्ता में मौजूदा संघर्षों और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ पर उनके प्रभाव को कम करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड से अलग हुई। सत्र में सशस्त्र

0: संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें संघीय सरकार को निर्देश दिया गया है कि कानून के अंतर्गत जहां तक संभव हो कार्यपालिका से जुड़े कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI शब्दों की जगह है सुपर इंटेलिजेंस और SI शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: इनॉग्रेटिंग द एरा ऑफ सुपर इंटेलिजेंस शीर्षक वाले इस आदेश के तहत सरकारी एजेंसियों को अपने आधिकारिक पत्राचार, जनसंचार, डिजिटल वेबसाइटों, रिपोर्टों और प्रशासनिक नीति दस्तावेजों में नई शब्दावली का इस्तेमाल करना होगा। आदेश में कहा गया है कि तकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति पारंपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा से आगे निकल गई है। इनमें प्रशासन को सुपर इंटेलिजेंस की नई कानूनी परिभाषा तैयार करने और मौजूदा अमेरिका के कानूनों में उसके अनुरूप बदलावों की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान आया, जिनमें एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई और जेनसन हुआंग सहित कई अधिकारी शामिल थे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत और इटली ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। इटली में कल आयोजित भारत इटली पर्यटन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक में ये सहमति बनी। बैठक में दोनों देशों ने पर्यटन संबंधी आंकड़ों का आदान प्रदान, कम चर्चित पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने, फिल्म पर्यटन, पर्यटन स्थलों के बीच साझेदारी, कौशल विकास और क्षमता निर्माण तथा कारोबारियों के बीच संपर्क बढ़ाना शामिल है। इसका उद्देश्य संबंधित पक्षों के बीच लगातार संपर्क और सहयोग को सुगम बनाना है। कजाकिस्तान के ओस्केमेन में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2026 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कल आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अंतर्गत अर्ध पारंपरिक वातावरण में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं की अंतर संचालनीयता को बढ़ावा और उनकी क्षमताओं को मजबूत कराना है। अभ्यास में अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों के अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त योजना, हवाई गतिशीलता, मानव रहित हवाई प्रणालियां और ड्रोन रोधी क्षमताएं शामिल हैं। सैनिक छापे, खोज और विनाश अभियान, घेराबंदी और तलाश अभियान तथा विशेष हेलीकॉप्टर आधारित अभियान भी चलाए जाएंगे। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को और गहरा करेगा। यह अभ्यास क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी कीने की जोड़ी ने भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने भी फाइनल में चीन को 238 के मुकाबले 234 अंक से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234 के मुकाबले 233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। भारत अब 8 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य सहित कुल 54 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कंपाउंड तीरंदाजी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि तीरंदाजों की उत्कृष्ट सटीकता, धैर्य और टीम भावना ने देश को गौरवान्वित किया है। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था, जिसमें विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व

7:30 हो चुके हैं। दिल का मेल बॉक्स लेकर के हाजिर हम आ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। आपके मेल हमारे सामने हैं, आपकी चॉइसेस के गाने हमारे पास हैं और मैं हूं आपके साथ।

तन्हा कैसे होगा, गुनगुनाइए आप हमारे साथ दिल का मेल बॉक्स में। आपका मेल है हमारे पास फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, पूजा पिंकी, बाबू शिवा, शिवानी, पावन गौड़ और योगेंद्र नायक कास गजम्बी। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप हैं हमारे साथ इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। आपको पता है कि हमारे पास एक मैसेज आया है और ये कहते हैं कि देखिए, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन, प्रांजल, समीक्षा, लल्ला, राजू, बेबी आराध्या कहते हैं कि देखिए, मैं बहुत दिनों से आपको एक गाना की चॉइस भेज रहा हूं, आपके पास अगर नहीं है तो बता दीजिए ना। नहीं नहीं, हमारे पास है, हमारे पास सारे गाने हैं, लेकिन क्या होता है ना कि देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, 10:30 बज चुके हैं और दिन अभी शुरू हुआ है, ऐसे में कोई ब्राइट गाना होना चाहिए, कोई ऐसा गाना जिसको आप दिन भर गुनगुना सकें, एक ऐसा गाना जो कि हम सबको इंस्पायर करे, है ना। अब आप ही बताइए, ये गाना भी है हमारे पास, किसी ने हमें लिख के भेजा है कि सारे बदन में जहर चढ़ गया। नहीं, अभी जो गाना है ये है आपकी चॉइस का। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका, और कहते हैं कि हमारा हर पल खुशियों से भरा रहे। और हम भी आपके लिए कहते हैं कि हर पल खुशियों से भरा रहे, अच्छे अच्छे गाने आप गुनगुनाते रहें।

और हम आ गए दिल का मेल बॉक्स लेकर के। टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दीवे, रमाताई, दीक्षा, रीमा और राहुल डोंगर दीवे। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पाठक। फरमाइश करता ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरुवंत सिंह जौड़ा। और ये जो गाना सुनना चाहते हैं वो हमारे पास है। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं हमारे पास सारे गाने हैं और आपका गाना लेकर के हम बस अब भी फटाफट हाजिर हो जाते हैं। तो दिल का ये मेल बॉक्स है जिसमें आप बताते हैं अपनी चॉइस और आपकी वो चॉइस लेकर के हाजिर हो जाते हैं हर बार की तरह हम। जैसे कि ये वाला गाना फिल्म आनंद से और गाया है मुकेश जी ने।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
6: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

ये है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे और आप हमें करते हैं मेल fmgoldairdelhi@gmail.com। लगे रहिए, करते रहिए, अपनी चॉइसेस भेजते रहिए।

अब हम तो आपको यही कहेंगे कि जरा नहीं ज्यादा मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगेगा अपने आप को भी। और ये गाने की फरमाइश हमें भेजी है मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला गौरी, रेलवे रोज गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुन हसन, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम, बेगम शबनम अनवार, और गाना है ये वाला।

पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा, कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हगोड़े, योगिता कुमारी प्रियाली पार्थ और पूरा परिवार, मजनू कटीला कमल बालूजा मधु सागर उमंग आकांक्षा माही मलिक, गांव जाद खोद राजस्थान से शंभू दयाल विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल खटक योगेश कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा, शाहजीनगर दिंगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता, मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी शहनवाज नावेद हसन सुहेल अनम यशफ रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धूपुरा टाउन से जुबैर अली खान, यादव मोहल्ला सनावत एमपी से दिलीप मालाकार सुनीता योगेश मुस्कान जितेंद्र धर्मेंद्र रीना नेशा मीरा हैप्पी। अब इतने सारे नामों के बाद मेरा मन कर रहा है मैं भी अपना नाम बता ही दूं। मैं हूं आपके साथ इंदु, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हैं, रिफाकत हैं, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन माहिरा नूर, ग्राम कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, वही जिनका नाम मैंने पहले बताया था, और लास्ट में ही इनके साथ बेबी आराध्या साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा, बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से

लाल, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, तिल्लू नायक, मधु नायक, और ये सब कहते हैं धन्यवाद। जी, ये रहा आपका गाना धन्यवाद। तो फिर हम भी आपको कहना चाहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

कलरव पत्रिका के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या आपने इस पत्रिका को पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, क्योंकि इतने सीमित संसाधनों और बिना किसी व्यापारिक सहयोग के 20 साल तक अपनी साहित्यिक गुणवत्ता को लगातार बनाए इन्होंने रखा हुआ है। नए लेखकों को मंच देते हैं, स्वतंत्र निष्पक्ष विचार रखते हैं और कलरव ने हमेशा से वैचारिक और समाज को दिशा देने वाले साहित्य को प्रमुखता दी है। पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कितने आराम से कलरव पत्रिका कर रही है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि यह घटनाक्रम भारत की नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान छुपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। तलाशी अभियान जारी है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी भारत पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों और नशीले पदार्थों को रखने और आगे पहुंचाने का काम करते थे। सभी आरोपियों के संपर्क विदेशी तस्करों के साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर दिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगस ने कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 56 पदकों के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर चिकिता तनिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम को बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला तीरंदाजी टीम को बधाई दी है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल में कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर साहिल राजेश जाधव और चिकिता तनिपार्थी को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

11:10 हो चुके हैं, ये समय है तस्वीर का। तो फिर चलो चलते हैं बादलों के घर में, जो है झरनों का शहर, जहाँ पे नेचर ना अपना रास्ता खुद बनाती है। सोहरा की धुंद और सुकून का कोई मुकाबला नहीं। जी हाँ, आज तस्वीर हम दिखाएंगे आपको सोहरा यानी कि चेरापुंजी की, जहाँ की धुंद, झरने, वादियाँ सब कुछ बयां करते हैं एक खूबसूरत कविता। पहाड़ों की ऊंचाई पे हरियाली का डेरा है, ये बादलों का घर है। जी हाँ, ये मेघालय का सोहरा है तस्वीर में।

ये सोहरा ही है जहाँ पे आपको लगेगा कि आसमान शायद आपके कदमों में आना चाहता है या फिर आप उसको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई पे हरियाली का डेरा है। ये सब कुछ नजारा सोहरा का ना, ऐसा लगता है कि जैसे आप बादलों के घर में आ गए हैं, जहाँ पे धूप छांव का खेल हर पल चलता रहता है। कभी उजाला है तो कभी अंधेरा है। आसमान से गिरती नौ काली कई की वो धारा, बड़ा अद्भुत नजारा लगता है। मव समाई की गुफाओं में सदियों का फसाना है। वे सांडोक के पानी में जब हमारा दिल खो जाता है। पेड़ों की जड़ों से इंसानों ने पुल बनाए हैं। यहाँ प्रकृति और संस्कृति के अद्भुत रंग सजाए हुए हैं। झमझम बरसती बूंदों का यहाँ पे बसेरा है। जी, ये मेघालय का

अरे मत पूछिए, पल पल दिल के पास तो हमारे सोहरा था। वो इसलिए कि जब हम स्कूल में थे तभी से ही ये क्वेश्चन हमें बार बार पूछा जाता था कि बताओ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, और वो जवाब चेरापूंजी है, यानी कि सोहरा। तो चेरापूंजी के ये जो सवाल जवाब थे ये मतलब स्कूल से लेकर के अभी तक बिल्कुल वैसे के वैसे अभी भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले सोचा था कि भाई चेरापूंजी तो ज़रूर जाना है, और जब गए तब लगा कि भाई वाह कितना सुंदर है ये, और ये जो सवाल है सवाल से कहीं ज़्यादा चेरापूंजी यानी कि सोहरा है। वहाँ पे आप वाटरफॉल्स देख सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है यहाँ पे, जो लगभग 1115 फीट की ऊंचाई से एक नीले हरे तालाब में गिरता है। वेई सांडोंग नाम है उसका। और उसके अलावा आप यहाँ पे सेवन सिस्टर्स फॉल्स है वो देख सकते हैं, चुने की चट्टानों से सात अलग अलग धाराओं में बहने वाला बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है। केव्स हैं वहाँ पे, मव समाई केव्स हैं, और पूरी तरह से लाइटिंग वाली चुने की प्राकृतिक गुफा है जिसे बच्चे और बड़े बड़े आसानी से पार कर लेते हैं। अरवाह केव नाम है उसका। और अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर और गुफाओं में करोड़ों साल पुराना फॉसिल्स देखना है तो फिर आप जरूर जाइएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो यात्रा होती है ना, मतलब कितना अच्छा वो सुखद एहसास होता है कि हम बस चले जा रहे हैं बादलों के बीच से छोटी मोटी पहाड़ियों को चीरते हुए, और रास्ते में जो चीज़ें हमें दिखती है ना ऐसा लगता है कि इन्हें तो हम पकड़ लेंगे क्योंकि ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी होती है, लेकिन असल में होता नहीं है ऐसा। तो चलिए, तस्वीर है ये चेरापूंजी यानी कि सोहरा की, सोहरा की सैर करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

और जब सोहरा की हवाएं आपके ऊपर लगेंगी ना, तो हवाएं आपका पता नहीं पूछेंगी, आप पूछेंगे कि हम कहाँ हैं। सोहरा आप कैसे जाएं? सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट और सबसे मतलब जो सबसे पास वाला एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी का है। वहां से आप टैक्सी करके लगभग 5 घंटे में सोहरा पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क द्वारा जाना चाहते हैं तो मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। आप वहां से जाइए, फिर वहां से आपको बड़े आराम से गाड़ियां मिल जाएंगी, प्राइवेट टैक्सी भी आप बुक कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मौसम का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोहरा में मौसम कभी भी बदल जाता है। कभी बारिश शुरू हो जाती है तो कभी आपको लगेगा कि धूप हो गई, तो अपने साथ छाता जरूर रखिएगा, रेनकोट भी रखिएगा। और वैसे भी छाता रखेंगे तो धूप में भी काम आएगा, बारिश में भी काम आएगा। कपड़े आप थोड़ा सा इसको भी थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा कि हल्की शाम को ठंड होती है, इसलिए हल्की जैकेट भी रखिए अपने साथ। और एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कई जगह नेटवर्क की दिक्कत की वजह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, तो थोड़ा सा कैश भी रख लीजिएगा। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी तैयारी वहां पे जाने की, लेकिन जाइएगा जरूर। ये तस्वीर है सोहरा की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। एक ऐसी जगह है जो बहुत ही अलग है, मतलब चारों ओर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का नजारा है। ऐसी हवा जो आप महसूस करेंगे कि शायद इसको अपने साथ अगर ले जा सकते तो लेकर जरूर जाते।

आगे यही होगा कि आप सोहरा को प्रॉमिस करके आएंगे कि देखिए हम अभी तो आए हैं और दोबारा फिर से आएंगे। ये है तस्वीर सोहरा की। सोहरा भारतीय राज्य मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा शहर है, जहां पे बारिश का रिकॉर्ड है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे नम जगहों में इसको गिना जाता है, तो बारिश के मौसम में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर जा सकते हैं, क्योंकि चेरापूंजी उसके लिए भी आपका स्वागत करता है। वैसे पता है ये जो सारी की सारी जगह होती है ना, मुझे यहाँ पे जब चांद देखती हूँ इनमें रातों को, ओहो वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। जाग के आप देखिए चांद, तारे और उनकी स्थिति, उनकी जगह बड़ी साफ साफ नज़र आएगी। इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर मौसम बहुत अच्छा है तो आपको ये सारी की सारी जो हम गाना आपको सुना रहे हैं ना, आपको लगेगा कि शायद आप सोहरा में बैठ के ये पूरा का पूरा नज़ारा देख रहे हैं। आई स्वेयर आपको बहुत अच्छा लगेगा।

0: ये तो आप अपने आप से पूछिए कि आखिर आपने बार बार इस जगह पे आने का जो वक्त है वो क्यों नहीं निकाला। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। घूमिए, दूर दूर चली जाइए, देखिए तो सही कि क्या क्या खजाना छुपा हुआ है, क्या क्या चीज है जिसको अभी तक हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, और जब देखेंगे ना तो फिर हैरान हो जाएंगे।
1: कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

सहरा में ठंडी हवाएं आपका स्वागत करेंगी, और अगर आप अकेले हैं या फिर किसी के साथ हैं तो भी आपको बहुत कुछ याद आएगा। बस यूं ही चलते चले जाइए, पता ही नहीं चलेगा कि कितने किलोमीटर हम चल दिए। शिलांग से सोहरा जब आप आएंगे ना, तो रास्ते में आपको एक बहुत ही सुंदर सी घाटी मिलेगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं, जिनको शौक है वो बिल्कुल इसको करें। इको पार्क है यहाँ पे, और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे अच्छे होम स्टे हैं यहाँ पे, उनको भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपके पास और कुछ दिन हैं तो फिर नोंगरियट गांव जा करके वहाँ पे वो डबल डेकर लिविंग रूट जो ब्रिज ट्रैक है ना, उसको भी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जहां तक बात है कि यहाँ का जो फूड है उसकी, उसको ट्राई कर सकते हैं। पारंपरिक खासी जनजातीय भोजन का स्वाद आपको मिलेगा, बहुत ही सादा होता है, कम मसालों वाला होता है लेकिन टेस्टी होता है। और आपको बहुत अच्छा चावल यहाँ पे मिल जाएगा, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं इनको ट्राई करना चाहिए, कम से कम एक बार तो ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उसमें से जो चीज अच्छी लगे बस उसकी रेसिपी अपने साथ लेके आइए, क्योंकि हम कई बार यादें तो लेके आते हैं और बातें करते हैं नज़ारों की, पर कई बार कुछ

ऐसी डिशेस भी हमें इंट्रोड्यूस होती हैं नई जगहों पे जिसको हम ताउम्र अपने साथ रखते हैं। फिलहाल तो तस्वीर देखिए ये सोहरा की आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। आप सोहरा गए हैं? नहीं गए तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कन्विंस करने की। जाइए वो दूर का कोना देख के आइए, और अगर आप अकेले हैं तो भी घूम के आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।

अब पहाड़ी रास्ते में जब आप सैर करेंगे तो थोड़ा तो संभल के चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप जादू टेस्ट कर सकते हैं, एक तरह का बिरयानी या पुलाव होता है, थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है, देखिए कैसा है। जा स्टेम, ये भी हल्के मसालों के साथ एक वेजिटेरियन चावल बनाया जाता है। उसके बाद तुंग टप, आप यहाँ पे देखिए मेघालय की ठंडी और धुंधली शामों में जो यहाँ का लोकल स्नैक्स है ना, वो बहुत ही पसंद किया जाता है, उसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। और एक ना मीठी सी एक बड़ी प्यारी सी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पोकलेन। ये चावल के आटे और गुड़ से बना एक मीठा तला हुआ, समझ लीजिए जैसे कि पुआ होता है ना वैसा, और इसको लाल चाय के साथ खाया जाता है। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी आपको कई सारे मिल जाएंगे, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। और सोहरा में जब बारी आती है कि भाई क्या खरीदें, बांस और केन के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो आप खरीद सकते हैं, दालचीनी और मसाले ले सकते हैं, और वहाँ का जो शहद है वो बहुत अच्छा होता है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।

जब आप सोहरा जाएंगे शॉपिंग करेंगे ना तो ज्यादा बार्गेनिंग मत कीजिएगा, उसकी संभावना थोड़ी कम ही रहती है। और वहां पे जाइए तो फिर गुनगुनाइएगा कि पहाड़ों की ऊंचाई पे हरियाली का डेरा है, ये बादलों का घर। जी हाँ, यही वो सोहरा है जो आपने तस्वीर में हमने आपको दिखाया था और आपने सुना था। आसमां से गिरती नोह काली कई की धारा, बहुत अच्छा लगेगा सारा का सारा वो नजारा। झमझम बरसती बूंदों का यहाँ पे बसेरा है, ये मेघालय का दिल है, ये खूबसूरत सोहरा है। तो फिर रिमझिम फुहारें जब आपके ऊपर गिरेंगी, चाय की चुस्की, जादू का स्वाद निराला मिलेगा, तो फिर हर मुसाफिर यही कहेगा, वाह क्या

0: वीरगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार ने तो लगता है मन बना लिया सोहरा जाने के लिए। फिलहाल तो मैं चली घूमने, फिर से मिलूंगी। तब तक 12 बजने वाले हैं, समय है ये समाचारों का, सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कम्पाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचांग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज

0: कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने कक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 당근.
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार।

जी हाँ, अगर भाषा नहीं आती है तो कोई भी हमसे कह सकता है यू आर बुद्धू और यू आर हैंडसम, जान लो। खैर, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दूजे के लिए, और लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। और अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास हम सबने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, तारीखें, राजा महाराजाओं के नाम रटने में कितनी मुश्किल होती थी। तब कभी कभी हम सोचते थे कि काश कोई टाइम मशीन होती जो पलक झपकते ही किसी भी साल में हम चले जाते और देखते कि उस वक्त हमारे भारत में क्या चल रहा था या किस जगह किसका राज्य था। ये मुमकिन हो चुका है, इसे इतिहास को हकीकत बना दिया है टाइम मशीन की तरह। मुंबई के रहने वाले पूर्व इंजीनियर और मार्केटिंग प्रोफेशनल कृष्णा शेषाद्री जी ने, जिन्होंने भारतराज्य.com नाम की एक वेबसाइट बनाई है जो भारतीय इतिहास को अनोखे और डिजिटल तरीके से दर्शाती है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। ये वेबसाइट भारतीय उपमहाद्वीप के

800 वर्षों के राजनीतिक इतिहास को मैप करती है। इस पर जाकर आप किसी भी विशेष वर्ष का चयन करके ये देख सकते हैं कि उस समय भारत के किस भूभाग पर किस राजवंश का राजा राज करता था या उसका शासन था। चोल, पल्लव, कोटा राजवंश या असम का अहोम साम्राज्य को हम सभी ने पढ़ा ही है, उन्हें उनके राज्य को इस वेबसाइट पर जाकर विजुअल और कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से देखा जा सकता है। यानी इतिहास अब किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे आपकी स्क्रीन पर जिंदा हो उठेगा। साथ ही यहां आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए इसमें एक खास टैब दिया गया है ताकि इतिहास प्रेमी या विशेषज्ञों की राय से ऐतिहासिक तथ्यों में सुधार करके इसे सटीक बनाया जा सके। तो अगर आपको भी लगता है कि किसी हिस्से का इतिहास थोड़ा अलग था तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सीधे सुझाव दे सकते हैं। ये वेबसाइट अपनी समृद्ध विरासत को जानने समझने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अपने स्मार्टफोन को खोलिए और bharatrajya.com पर चले जाइए और भारत के गौरवशाली इतिहास की सैर करिए।

और अब एक जरूरी बात कर ली जाए, अक्सर हम जब डॉक्टर के पास जाने लगते हैं तो पुरानी पर्चियां, भारी भरकम फाइलें और एक्सरे रिपोर्ट्स का पुलिंदा संभालना सबसे बड़ा और मुश्किल काम हो जाता है। कभी रिपोर्ट घर पर छूट जाती है तो कभी डॉक्टर के केबिन में मिलती ही नहीं। लेकिन अब इस झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी मिलने वाली है। भारत सरकार लेकर आई है आभा कार्ड, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों का आपका एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, यानी सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये स्वास्थ्य की एक तरह से तिजोरी है। जी हां, आपकी पुरानी बीमारी, डॉक्टर की लिखी दवाइयां, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सब कुछ इस एक डिजिटल कार्ड में महफूज रहेगा। जब भी किसी नए डॉक्टर के पास जाएं, बस ये नंबर दीजिए और डॉक्टर आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर देख सकेगा। ना फाइल खोलने का डर और ना ही पेपर संभालने की टेंशन। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। इसमें आपको डेटा पूरी तरह से, आपका जो है डेटा वो सुरक्षित रहता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फोन पर कंप्यूटर में जाकर abdm.gov.in वेबसाइट खोलिए। वहां क्रिएट आभा नंबर पर क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए और आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर दीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए और एक यूजर नेम बनाइए। बस आपका चमचमाता हुआ डिजिटल हेल्थ कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फिर इसे वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। देर किस बात की, अपना और अपने परिवार का आभा कार्ड बनाइए और सेहत के मामले में हो जाइए एकदम टेंशन फ्री।

फिल्म लव स्टोरी से ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और दोस्तों याद है बचपन का वो आंगन जहां सुबह की शुरुआत घड़ी के अलार्म से नहीं बल्कि नन्ही गोरैया की चहचहाट से होती थी। लेकिन आज हमारे आसमान से हमारे आंगन में वो छोटी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया कहीं गुम हो गई है। कारण कई हैं, बढ़ती आबादी, आधुनिकता, खेतों में कीटनाशकों का जहर और कटते पेड़ जिसने इन बेजवानों का आशियाना छीन लिया है। ऐसे में उम्मीद की एक किरण की तरह हमारे सामने आती हैं पंजाब के मोगा जिले के निधानवाला गांव से हरप्रीत कौर, जिन्होंने न केवल अपने घर को गौरैया और छोटे पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बनाया बल्कि पूरे गांव में कई जगह पर पक्षियों के लिए लकड़ी और मिट्टी के रैन बसेरे भी बनवाए। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी प्रकृति और जीवों से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। इसकी शुरुआत हुई उस समय जब हरप्रीत एक गंभीर बीमारी के बाद बिस्तर पर थीं। तब दीवार पर तिनका जोड़ती एक चिड़िया ने उन्हें जिंदगी जीने का नजरिया दिया और तब छोटे से गत्ते के डिब्बे से चिड़ियों के आशियाने की उन्होंने शुरुआत की। और आज हरप्रीत के घर में 175 से ज्यादा मिट्टी और लकड़ी के कृत्रिम घोंसले लगे हैं जहां रोज 250 से ज्यादा गौरैया चहकती हैं, जिनके लिए वो रोज सुबह सबसे पहले उठकर साफ और ठंडा पानी रखती हैं और गर्मियों में कंगनी या बासमती चावल और सर्दियों में गेहूं या बाजरा खाने को लिए देती हैं। हरप्रीत कौर इन चिड़ियों को अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और प्यार से उन्हें राजकुमारियां कहती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन परिंदों ने उनके जीवन में बेटी न होने का खालीपन भर दिया है। हरप्रीत कौर का इन परिंदों से रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि ये चिड़ियां बिना किसी डर के उनकी हथेली पर आकर दाना चुगती हैं। इन नन्हे जीवों की सुरक्षा के लिए हरप्रीत कौर हर संभव प्रयास भी करती रहती हैं। गांव के लोगों को उन्होंने पराली के धुएं और कीटनाशकों की रोकथाम के लिए जागरूक किया है। तो हरप्रीत कौर की ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं बल्कि एक संवेदनशील दिल की जरूरत होती है। और शुरुआत हमारे अपने घर की खिड़की या बालकनी में एक सकोरे में पानी और मुट्ठी भर दाने से भी हो सकती है।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी सरगम और आवाजें थी रफी और लता मंगेशकर की। और कहते हैं कि कचरे से कंचन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बात आज उसी की जिसने छोटी सी उम्र में ये कर दिखाया है। जी हाँ, नोएडा की रहने वाली 17 साल की रहनी बंसल एक नई क्रांति की नींव उन्होंने रख दी है, जिसका नाम है सूत्रधार। दर्जी की दुकान या फैक्ट्री में बचे हुए कपड़े को बेकार टुकड़े समझकर जिन्हें हम फेंक देते हैं और उन्हें कतरन कहते हैं, राहिनी ने उस कतरन से ग्रामीण महिलाओं का भविष्य उसमें उन्होंने देखा और 2024 में सिर्फ 6 महिलाओं के साथ एक छोटा सा कदम बढ़ाया, ये सोचकर कि पर्यावरण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि कपड़े के कचरे को भी कम किया जा सके और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। फिर शुरू होता है हुनर का जादू। उन बेकार कतरनों को रिसाइकिल करके ये महिलाएं ऐसे खूबसूरत और ब्रांडेड शर्ट, बैग और डिजाइनर कपड़े तैयार करती हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। सूत्रधार सिर्फ एक नाम नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। राहिनी बंसल की ये पहल उन महिलाओं के बिल्कुल मुफ्त उसमें उनको सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग भी देती है और ये बहुत ही खूबसूरत कदम है। जानते हैं कि ये जो शुरुआत हुई थी उनकी, वो 6 महिलाओं से हुई थी और 2050 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं अब इसमें शामिल हो चुकी हैं और अपनी सुविधा के अनुसार काम करके हर महीने 4,000 से लेकर 25,000 तक कमा रही हैं, वो भी अपनी चौखट को पार किए बिना। तो अगली बार जब भी आप सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फैशन की बात करें तो राहिनी बंसल और सूत्रधार की इन महिलाओं को जरूर याद करिएगा, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो, हाथों में हुनर हो, तो बेकार कतरन भी ब्रांडेड पहचान बन जाती है।

कामचोर, इस फिल्म से अभी आपने सुना किशोर और लता मंगेशकर को। और अब बात 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान की। ये राष्ट्रव्यापी सफाई आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आम जनता को सफाई से जोड़ने और कचरा प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

इस वर्ष इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत, यानी स्वच्छता केवल सरकारी काम नहीं बल्कि नागरिकों को, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। इस पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने और इसे एक पारदर्शी जन आंदोलन बनाने के लिए स्वच्छता ही सेवा पोर्टल जारी किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के किसी भी कोने में, किस शहर या गांव में कितनी सफाई हुई है, इसका डेटा और तस्वीर लाइव देखी जा सकती है। वास्तव में ये पोर्टल देश के सफाई अभियानों को एक क्लिक पर जोड़ने और हर भारतीय को इसका

भी कोने में किस शहर या गांव में कितनी सफाई हुई है इसका डेटा और तस्वीर लाइव देखी जा सकती है। वास्तव में ये पोर्टल देश के सफाई अभियानों को एक क्लिक पर जोड़ने और हर भारतीय को इसका हिस्सा बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस पोर्टल पर इसे जुड़े ऐप के माध्यम से कचरे वाले संवेदनशील स्थानों की रिपोर्ट की जा सकती है ताकि उन जगहों को पहचान कर उन्हें तुरंत साफ किया जा सके। एक बात और, इस पोर्टल पर योगदान देने वाले लोगों और संस्थाओं को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। सड़क, मैदान, पार्क, पहाड़, समंदर सब हमारे हैं और हमारे लिए हैं और इन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना भी हमारा ही कर्तव्य है।

अभी आप फिल्म रॉकी में सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और अब बात कर ली जाए कुछ सेहत की, एक ऐसी सब्जी की जिसे आयुर्वेद में अचूक औषधि माना गया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं जिमीकंद की, जिसे कई जगहों पर सूरन या ओल भी कहा जाता है। दिखने में भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जिमीकंद में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। साथ ही इसमें पाया जाता है विटामिन B6, जो मस्तिष्क के विकास, मूड को ठीक करने और बालों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसी तरह से इसमें पाया जाता है फोलिक एसिड, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की खून की कमी को रोकने में जो सहायक होता है। आंखों की रोशनी और त्वचा और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन और जो है इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। जिमीकंद में बहुत से खनिज और पोटेशियम भी पाए जाते हैं, इसलिए ये ब्लड प्रेशर, हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। और साथ ही इसमें पाया जाने वाला आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के संचार को बेहतर बनाता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस भी पाया जाता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको बनाने से पहले एक बात ध्यान रखनी होती है कि जिमीकंद काटते समय हाथों और गले में बहुत खुजली होती है, तो जब भी इसे काटें तो ग्लव्स पहनकर काटें और इसके जब गले में ये प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इसको बनाने से पहले इसमें हमेशा नींबू, इमली या आमचूर के रस के साथ ही इसे उबालें और पकाएं। और तो जब इतने सारे फायदे हैं इस फल के, तो क्यों ना इसे अपनी डाइट में शामिल किया जाए।

अच्छा, तो हम भी चलते हैं, और क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, और आप ये गीत जो सुन रहे हैं ये है आन मिलो सजना से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। तो मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता निपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन

0: सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त तो है ठीक 1:11:04 और ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। भारतीय फिल्म सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर जिनकी फिल्में जब भी देखो उतने ही चाव और आनंद के साथ देखी जाती है जितनी कि उनकी रिलीज के वक्त देखी गई होंगी। शायद ही कोई सिने

प्रेमी होगा जो उनके फिल्म मेकिंग के अंदाज स्टाइल से वाकिफ ना हो। अपनी फिल्म्स में उन्होंने छोटे छोटे विषयों को भी बड़ी संजीदगी के साथ पेश किया। यही नहीं, फिल्मों का एंटरटेनमेंट पक्ष भी पूरी तरह से बरकरार रखा जाता रहा। यही वजह है सत्यकाम, आनंद, आशीर्वाद, चुपके चुपके जैसी मूवीज आज की पीढ़ी भी उतना ही पसंद करती है। गौर करें तो ज्यादातर फिल्म्स उनकी पारिवारिक सामाजिक रहीं। उनके कलाकार भी उतनी ही शिद्दत से पात्रों में डूब जाया करते थे जितनी लगन और मेहनत से वो फिल्म मेकिंग किया करते थे। तो आज के सफर पर, कलाकार बेमिसाल के सफर पर, निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सिने करियर की बातें सुनते रहें आकाशवाणी गोल 100.1। अंजलि है आपके साथ।

जाने माने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी का जिक्र हो रहा है। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। फिल्मों से जुड़े लोग उन्हें ऋषि दा के नाम से ज्यादा पुकारा करते थे। जन्म इनका हुआ 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में। फिल्मों में आने से पहले ऋषि दा गणित और साइंस के शिक्षक रह चुके हैं। शतरंज खेलने का भी इन्हें काफी शौक रहा। फिल्मों में आने का शौक इन्हें हुआ कोलकाता के न्यू थिएटर से। फिल्मों में उनके करियर को सही दिशा देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का काफी सहयोग और साथ रहा।

जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मी करियर पर बात करें तो इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई 1951 की फिल्म दो बीघा जमीन से। इस फिल्म में वो एक सहायक के रूप में जुड़े थे। जाने माने दिग्गज फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की और लगभग 6 साल तक एक सहायक के तौर पर काम करते रहे और निखरते रहे। स्वतंत्र रूप से 1957 की फिल्म मुसाफिर में उन्होंने एज अ डायरेक्टर फिल्म का निर्देशन किया। मुसाफिर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल तो नहीं दिखा पाई, पर शोमैन राज कपूर उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 की फिल्म रही, इसके निर्देशन की बागडोर उन्होंने ऋषि दा को ही सौंप डाली। अनाड़ी फिल्म आपने जरूर देखी होगी। फिल्म दर्शकों के दिलों पर गहरा असर छोड़ती है। गीत संगीत भी फिल्म का लाजवाब है। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले जब इस फिल्म की बात हो रही है तो 1959 की अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचा दिया जाए। लता जी की आवाज और मुकेश साहब की आवाज़।

प्रशंसा की। ऋषिकेश मुखर्जी ने इसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद जैसी जो फिल्म्स का उन्होंने निर्देशन किया और लगभग चार दशक के अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी। और हमेशा स्टोरी चाहे गंभीर हो या हल्की फुल्की, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास किया ऋषिदा का, आज उन्होंने ऋषिदा ने। और ऋषिदा का जो फिल्म डायरेक्शन का एक अलहदा ही तरीका रहा और अपने दौर के जो दूसरे जाने माने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ उनका कोई भी कमर्शियल कंपटीशन कभी रहा ही नहीं। उनका एक अपना अलग स्टाइल, एक अलग अंदाज और एक अलग धारा में बहे ऋषिकेश मुखर्जी।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर आज हम बात कर रहे हैं जाने माने फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की। फिल्म्स के अलावा उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों के लिए भी काम किया। तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छाओ, रिश्ते, उजाले, इन धारावाहिकों के लिए भी उनका काम काफी सराहनीय रहा। इसके अलावा उनके गीत फिल्मांकन का जो तरीका था ना, बेजोड़ रहा। एक बार उन्होंने

खुद ही कहा था कि पर्दे पर किसी जटिल दृश्य के बजाय साधारण भाव को चिन्हित चित्रित करना कहीं अधिक मुश्किल काम है। इसलिए मैं इस तरह के विषय में अधिक रुचि रखता हूं। मैं अपनी फिल्म्स में संदेश को मीठी चाशनी में पेश करता हूं और कोशिश करता हूं कि एक बैलेंस बना रहे। तो भाई किस तरह का बैलेंस बनाते थे ऋषिदा, ये तो हम उनकी फिल्में देखकर जान ही जाते हैं कि सचमुच मजा आ जाता है जब जब उनकी निर्मित फिल्में हम देखते हैं।

1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1972 में उनकी फिल्म आनंद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें उनकी फिल्म 1956 की नौकरी और 1959 की मधुमती, साथ ही 1972 की आनंद के लिए बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से नवाजा गया। सन 1999 में भारतीय फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ऋषिदा को नवाजा गया और सन 2001 में ऋषिकेश मुखर्जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

ऐसे बेजोड़ उत्कृष्ट फिल्म निर्देशक निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी को अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया उनकी फिल्म्स और उनके कामों को लेकर 1991

निर्देशक बिमल रॉय से जुड़ने से पहले 40 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने सिने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन शुरुआत की थी। यही उनकी मुलाकात जाने माने संपादक सुबोध मित्र से हुई। उनके साथ रहकर ऋषिदा ने फिल्म संपादन का काम सीखा। ऋषिदा ने बाद में बिमल रॉय से जुड़कर उनकी फिल्म दो बीघा जमीन और देवदास का संपादन भी किया। अपने करियर की शुरुआत में ही दिग्गज कलाकारों को अपने निर्देशन में काम कराने का उन्हें मौका मिला। मुसाफिर फिल्म जिसका उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया था, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन जैसे कलाकार रहे इस फिल्म में। इसके बाद अनाड़ी में भी उन्होंने राज कपूर जैसे महान अभिनेता को अपने निर्देशन में काम करवाया। अनाड़ी फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म ने ऋषिदा को भी फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया।

कर रात्रि 9 बजकर 16 मिनट तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायिका श्रीमती संगीत सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अश्युत बर्मन और श्री हेमंता स्वागरी, मनपा में उत्कोषक श्री कुंचो संगीकी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उत्कोषिका यीशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104 MHz पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 30 तारीख व दिन है बुधवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब

ये आकाशवाणी का तान केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: Constitution Club in New Delhi. Congress leader Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, Samajwadi Party leader Harindra Mallik, RJD's Tejaswi Yadav, CPIM John Brittas, NCPSP leader Supriya Shule and others were present in the meeting. Indian trio of Kushal Dalal, Sahil Jadhav and Ganesh Maniratnam, Tirumuru edged China to clinch gold in the men's compound team event in the ongoing Asian Games today. India completed a hat-trick of compound gold medals after the men's team registered a 238-237 comeback win over China in the final. Earlier in the day, the women's team of Chikita Taniparthi, Prithika Pradeep and Jyoti Sureka Vennam beat China 238-234 to successfully defend the gold medal, followed by mixed team gold by Chikita Taniparthi and Sahil, who also secured the LA 2028 Olympics quota place for India. Indian boxer Priya Ghangas has also clinched a bronze medal in the 60-kilogram category, showcasing the nation's growing prowess in boxing. In the trap mixed team event, Niru Danda and Kinan Chennai produced a remarkable turnaround under pressure to clinch the gold medal. India moved up to the 7th in the medal tally with 10 gold, 21 silver and 28 bronze. Overall medal tally reaches 59. In men's cricket, West Indies were 15 for no loss in 2.3 overs against host India on the second ODI of the three-match series at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. The government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles, targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को

0: वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94.50 अरब डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रूकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया के तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद

0: भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है, जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
2: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
3: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
4: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है देश के सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
3: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
5: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
3: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्न

0: संगम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार द्वारा गाए चंद हिंदी देवभक्ति गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत। कार्यक्रम प्रदेशी संगीत में आज आप सुनिए जुबिनगर और नीलिमा खातून की आवाजों में चंद असमीय गीत।

0: श्रोताओं, इस आशा में गीत के साथ ही विभिन्न प्रंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए पीएम श्री जैन भी तवांग की छात्रा सुक्षी संगे चोजुम देरू से एक वार्ता। वार्ता का विषय है स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व।
1: स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है, इसे अपनाना हमारी शान है। स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है, इसे अपनाना हमारी शान है। परंपरा और संस्कार से ही बनती है असली मानता हमारी। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं कुमारी संगे जोजुम देरू पीएमसी जनवी तवांग कक्षा 9 की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व पर है। हर समाज की अपनी एक अलग पहचान होती है। यह पहचान उसकी संस्कृति से बनती है। जब हम कहते हैं स्थानीय संस्कृति, तो इसका मतलब है कि हमारे गांव, शहर या प्रदेश की परंपराएं, रीति रिवाज, लोक कला, लोकगीत, पहनावा, त्योहार और भाषा, यह हमारी पहचान और गौरव को दर्शाती है। स्थानीय संस्कृति हमें अपने जड़ों से जोड़ती है। यह हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और उन्होंने हमें कौन से संस्कार दिए हैं। जब हम अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, तो हमें अपने देश और समाज पर गर्व महसूस होता है। आज के आधुनिक युग में हम नई तकनीक और आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। यह जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी स्थानीय संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम विदेशी संस्कृति को अपनाने के चक्कर में अपनी भाषा और परंपराओं से दूर हो जाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। स्थानीय संस्कृति का महत्व केवल हमारी पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें नैतिकता, भाईचारे और एकता भी सिखाती है। हमारे त्योहार हमें मिलजुल कर रहना भी सिखाती है और हमारी परंपराएं बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्रेम करना सिखाती है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति हमारे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। हस्तशिल्प, लोक कला, पारंपरिक भोजन और लोक नृत्य देश विदेश के लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे पर्यटन बढ़ता है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। स्थानीय संस्कृति हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना भी सिखाती है। हमारे कई रीति रिवाज पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। जल, जंगल और भूमि की रक्षा हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हमें अपनी स्थानीय संस्कृति को बचा

0: आना है तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, अपने त्योहार को पूरे उत्साह से मनाना चाहिए और अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को अपनाए और उस पर गर्व करें। संस्कृति में ही बसते हैं संस्कार, संस्कृति में ही बसते हैं संस्कार, स्थानीय परंपरा ही है देश का सार। नई पीढ़ी को इसे समझाए, अपनी पहचान को जीवंत बनाए, भारत को सशक्त और मजबूत बनाए, देश के विकास में इसका मान बढ़ाए, देश के विकास में इसका मान बढ़ाए। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत प्रेमश्री जैन विद्वान के छात्र सुखशी संगीतोजुम देहरो से एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। आई हैड लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्र के आवाजों में। इस गीत को बोल दिए है कुमार ने और संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।
0: स्थानीय संस्कृति हम

अमित त्रिवेदी के संगीत पर श्रोता भी अपने फिल्म ऊंचाई से नकद सतीश की आवाज में गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान के आवाज में। इस गीत के रचयिता इरशाद कामिल और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही महिला पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त होता है।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। ये श्रोता पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म स्त्री 2 से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर की आवाजों में। इस गीत के रचयिता अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

जलीस रशीद के गीत पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला संगीत फिल्म क्या यही प्यार है से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने।

अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।

फिल्म महाराष्ट्र से श्रोता भी आपने मोनाली ठाकुर की आवाज में गीत का आनंद लिया। इस गीत के रचयिता कौसर मुनीर तथा संगीतिया था सोहेल सैनी। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिदा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को बोल दिए हैं समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। Google Play Store और Apple App Store पर Waves OTT इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और My Waves सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर Gems of India चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा Waves OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।

श्रोता, अभी आपने गुलजार के रचे बोल पर फिल्म सुरमा से दिलजीत दसौंझ की आवाज में गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, खेल खेल में फिल्म से विशाल मिश्रा और सरा एस खान के आवाजों में। इस गीत को बोल दिए हैं कुमार ने और संगीत दिया है तनिष्क बग्ची ने।

0: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, अनु मलिक के संगीत पर फिल्म फिदा से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी।

0: और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। राग है मलहर।

अंतर्गत उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन राग था मलहर। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्ष में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना है। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग ने असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा तथा दोनों राज्यों की 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा किए जा रहे संयुक्त क्षेत्रीय दौरे की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। पापमपारे जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पारे इंटीग्रेटेड रिजर्वर्स में 4 लाख से अधिक फिश फिंगरलिंग्स छोड़े गए। वेस्ट कामेंग जिले के रूपा स्थित आसू ज्ञापन क्षेत्रीय स्टेडियम को प्रतिष्ठित फीफा क्वालिटी फील्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं के सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग ने असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा तथा दोनों राज्यों की 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा किए जा रहे संयुक्त क्षेत्रीय दौरे की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सभी समिति अध्यक्षों से अपने असम के समकक्षों के साथ करीबी समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्रीय दौरे में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने संवाद और आपसी समझ की भावना के साथ आगे बढ़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के शीघ्र सौहार्दपूर्ण और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान के लिए निरंतर संपर्क तथा रचनात्मक रणनीतिक समिति की आवश्यकता पर बल दिया है। अरुणाचल प्रदेश के पापमपारे जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पारे इंटीग्रेटेड रिजर्वर्स में 4 लाख से अधिक फिश फिंगरलिंग्स छोड़े गए हैं। इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन में वृद्धि करना तथा क्षेत्र में टिकाऊ आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम मत्स्य विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत जिला मत्स्य विकास अधिकारी यूपिया द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ निपको के प्रतिनिधि, चौधरी दोमुख विधानसभा क्षेत्र के विधायक

0: के ओएसडी, जिला पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वेस्ट कामेंग जिले के रूपा स्थित आसू ज्ञापतों क्षेत्रीय स्टेडियम को प्रतिष्ठित फीफा क्वालिटी फील्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ये मान्यता अरुणाचल प्रदेश के लिए खेल अवसंरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे राज्य में खेल सुविधाओं को लगातार मजबूत किए जाने और युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसरों को तैयार करने का दर्शाता है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा है कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ा है।
1: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रेट से लगभग दुगुने से ज्यादा प्रगति।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना के परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया है। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वही सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा सुनिश्चित चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुरी मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में उपस्थित हैं। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 177 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इस यात्रा को शुरुआत की थी। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा रिपोर्ट अपडेट के साथ बनी हुई है प्रियंका अरोरा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंचे।
0: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 36वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 283 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक

विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से अधिक गांव अभी प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण

0: ग्याघर ग्याघप का मुइठो चौंग थोयुक निंग ग्याघप निक पेंजोक थुनम चित तोनु डक्षो थोयुक पैगु जुसंबुर उई छोले निंग सोटकांग लोंचिन कुश पीयूष गोयल सी नंगदांगा ग्याघर निंग अमेरिका ग्याघप निक प्रेका पेंजोक थुनम चित मुथी डक्षो गैदों दंबुर कुश पीयूष गोयल सी अमेरिका ग्याघप का छोगु गोलमेज छुंदुई का ग्याघरा सोटुकांग छाले यारगे केदों नोकर नहुमबुर पेनांगसी अमेरिका गेखप कक कंपनी बाशा ग्याखरा हुइटो चोंग थोयुक सोटुकांग प्रिशो बानं त्योका रुये छाले नायुक इजिक दिंदुइक यारगे थोका रुये हुइटो चोंग थोयुक रेगुई शुसंबुर वी चोंलेनिंग सोटुकांग लोंचिन कुछ पीयूष गोयल पेनांग देश अमेरिका गेखप का G20 थुंडी गेखप बाग लोंचिन लंगे बाग थोरिम चोंदी का न्योमजु नोयुक हिंबुर नेपाल गेहब का नामथिम मुथु छोदुसी नदे बिहार चांगशो सनेबा का छुलोक नेदंग दुक्शो शोंगु नोंबुर युई क्यानेला छुलोसी कांगे थोंगु नोंबुर आकाशवाणी कुसेंगिर गोयमिसी निचुई बिदंगा नदे बिहार कक्चिख्यप लंचिन कुशप सम्राट चौधरी सी देश नुपशो चंपारन चोंगडेक नुमटुक तत सिकोर याना नोंबुर चिख्यप लंचिन सी जोंगडेक सिंजोंशा सबजब यायुक निंग छुलोसी कांगे थोंगनु सने बाका क्याप्सोरम नायु छाले शुतेंशो नांगन्यक्स काफापुंबुर लिंटिन एशिया का गेखप बाग एशियन गेम्स चेमो बाका देश ग्याघरसी सेर्क तम ब्ली थापुंबुर तम थापुक अंगी बाका ग्याघरसी सेर्क तम ची मुइक तम खलिथी इजिक जंग तम खलिगेट कम्स क्योंदुम तम खेने चिदुगु थप्स अंग निस्मु का शोंगु नोंबुर ग्याघर निंग वेस्ट इंडीज नेक प्लेका दुर्दु प्लांग थिमा क्रिकेट चेमो देंडुर्क देंडुर निपिजित देश टोंकर गुवाहाटी कक क्रिकेट स्टेडियम का तत दुर्दो नोंबुर ग्याघर सी टोस ते या ना बोलिंग आयुक थकजोय लोंगु नंगतर तोतना चे नेचुई थपतांगा वेस्ट इंडीज सी ओवर खेने नई गया चे चेमो खेवा ब्ली आउट गया रन सुमगे खेने निस चोया शानदों नंबर हाँ उद्दम्बे देशिक नेछुई खा चंशो बाचित दूस हाँ दा तुम्रेक लेरिम नाउछुई कलोप चित कोचोदुर तेशुत लेरिमा गेगाप लोचोक सेराजे डसंक केशी लोपसंग छुएदर्सी थेकचुंग सोजोंग निंग नुमनेक फायनकोर शुसु सन्नंसा
1: नाउछुई अलेया दावा नेखें इजे नेगे सरप ने सरप पावा चंद्र से कटिन दुशिंग अनुपमा जवा लंगन छेदे ने कने तम मेना शर ने थेचे सजों गु तंबने न्यूने की तंबा ताव ने जो तंबा थी राय थेचे सजों गु तंबा ये कन लोना पायन न्यूने ये कन सुन दे ना पायन गया ने इजे तो दुदु दिन यो शुदु ता ना ता छे न्यूने के तंबा ये ना थेचे सजों गु तंबा लंगु नाले नमे के देखतर शिसे नवा नागे प्लांग में जोंते बेते सुंगो सुयंगो ऐसे ते टिपो नागे के सुंगो सुनोग मो ताई जी जे लक्स न्यूने ने पंच सोना त्याचा मनोधि कावा तांबो लंगो सुतनो यंगो इचे तें से सुंग ते युक छे चंचु छोका त्याबा एक पाच सुंग ना पाइन गए ने राशे छप्सं गए ने एक नासा से कंगो सु केंद्र मिमे इचे तें से नादा छे संगी चम्मन देसी ताई क्याचे रोगा आनेस इतना पे संगे के कचे संजी तो कैसे रोका नहीं तुम इतना सुनो ना मेरा संगे चुन्ये का त्यागा शिंदु ये पर का मेरुं के पंग ये का चुन्ये पर ने जो हिं संगे चुन्दा दावा तं त्यागा चुन्ये दंबा त्यागा तंजे दान्ये के बामे मोले नंबर पंग कम जेत ना उत कम जेत सु आ सों देगे ना सी उस आ सों या उत कम ठीडी ठीडी दंबा श उसकी न्यूने संयुक्त किंबर तेज़ संजान तंबा संयुक्त शेयर ये फंड आया ना थप मनु याना हाजातों जातम न्यातं रावण मनु संयुक्त जत्ते यू डाबे जत्ते यू उस कम जेसो के संयुक्त दोनों उस न्यासो से कम दोस्त हैं जंते मिलो इसी ने के युक्त लोटे के नासिस आसन है जो उस जाने जाने रांसिचां मनासले रंग कंटे कुछ तो त्याचा मनु कम चेचे त्याचा मनु दी तंदा दी

निरिमे 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 7.14 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आए पहले सुनते हैं जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय तवांग से प्राप्त एक सूचना। तवांग और किटपी क्षेत्र के ईकेवाईसी का कार्य जारी है। अंत्योदय अन्न योजना ए

एच और प्राथमिकता वाले परिवार प्रायोरिटी हाउसहोल्ड के सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि राशन कार्ड एवं परिवार की जानकारी में आवश्यक सुधार या अपडेट के लिए स्मार्ट पीडीएस सेवा काउंटर डीएफसीएसओ कार्यालय तवांग में संपर्क करें। यह सुविधा सभी सरकारी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक उपलब्ध रहेगा। लाभार्थी अपने साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। समय पर ईकेवाईसी और जानकारी अपडेट नहीं कराने पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रिकॉर्ड से नाम हटाया जा सकता है। सूचना समाप्त हुआ। कार्यक्रम जरूर हमें आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम शेनुनेरे में आप सुन पाएंगे। तेंजिन छोजम के नेतृत्व में तांग लाकर आमा छोकपा द्वारा शेदन झुंझक सुम्पा क्याप्रो मंडल ग्यावे शक्तन गंगलोमा ड्रेमा शिरप इंगपो तुंग शक्पा चीशा मामे सोनम तेंसित मल्लम और गोवा मल्लम। शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम 7:10 पर साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुति एवं निर्माता होंगे सुक्षी चिटिम्यांगचिन। शाम 7:45 पर आकाशवाणी के टनगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम क्वामे तराने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे फिल्म लक्ष्य से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 बजे आनंद ले पाएंगे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों में कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 1 अक्टूबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कल इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे चंद शिव भक्ति गीत। दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेश संगीत। इसके अंतर्गत कल आप आनंद ले पाएंगे कुमार सानू के आवास में चंद बंगला गीत। कल दोपहर 3:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद ले पाएंगे फिल्म अनजाना अनजानी से शेखर रवजानी और करलिसा मोंटेरो, फिल्म गजनी से जावेद अली सोनू निगम, खट्टा मीठा फिल्म से के और सुनिधि चौहान, फिल्म सिंगिस किंग से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषल, बागी फिल्म से अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर, एक पहली लीला फिल्म से उज्जैर जायसवाल, शिवाय फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान, ब्रेक के बाद फिल्म से विशाल ददलानी और अलेशा मेंडोंसा और फिल्म बॉडीगार्ड

से एश किंग और क्लिंटन सेरिजो और फिल्म ए दिले मुश्किल से अरिजीत सिंह और फिल्म अलीशा से निखिल डिसूजा और अमित त्रिवेदी की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:00 मनपा कार्यक्रम नमथन लरिम, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम तेंदुक समा, शाम 6:00 आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कला आप सुन पाएंगे ICAR पासर के डॉक्टर धोनी जिनी सीनियर साइंटिस्ट के साथ हुए एक भेंटवार्ता। इनसे भेंटकर्ता होंगे सुक्षी केन्यू मांगो। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लेरिमसेडा, 6:37 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:44 पर मोनपा कार्यक्रम शिदुन लेरिम। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे तवांग मठ के स्वर्गीय लमा लंगा त्सरिंग और साथियों द्वारा शेदुन डोलमा तोयपा। कल शाम 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे मोनिन विद्या निकेतन तवांग के छात्र कोंचुथुम्मु दोमगे से हिंदी में एक कविता। कल शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक और अनेक। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक, सिर्फ तुम फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक, जानवर फिल्म से उदित नारायण अलका याग्निक, हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से अलका याग्निक उदित नारायण और फिल्म एक रिश्ता से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में चंद नगमे। शाम 7:45 पर आकाशवाणी के टनगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल रात्रि 8:00 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आनंद ले पाएंगे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्क्रीन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरूखा अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: ओज आकाशवाणी तवाइम्बर लाइना झाम नपती थुजे ग्रोकनिंग कर्म खेली होनी लाइना दा देशिक शेदन लेरिम चित कोचुदुर लाइना देशुत लेरिमा तवांग लाकर आमु छकपक तेंजिन छंजम श्री ख्रिस्तनु जुनचक सुंपा क्याब्रो मंड्रे क्यावे जप्तेन गांगलोमा ड्रोयमा शेरप निंगपो तुंगवा शकपा चिशा मामे सोनम तेंसिक मोनलम निंगो मोनलम सन्नांगसा
1: Sanye chudan suye chonam la chanjo bado da

Shri Bhu Chandra Simba Simba Chimbu.

지수일로와 참무시병에 내기받은 기도제와단 기받아 지수일로와 미개와 주의 내기 남양당과 남바다 슈바당

Thank you.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1779 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी

0: मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी चार कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देशभर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Lalima Aneja Dang. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
3: Rabi season ki MSP badhane se
4: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today.

0: किंतु कुछ ही लोग आपको समझते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त हिंदोजी जुर्मा, तकनीकी सहयोगी न्यूटन बोरा, आशीष बर्मन, हेमंता स्वर्गियारी और तानिंग तको के साथ हम लेकर आए हैं हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में पहला फोन किस श्रोता से प्राप्त हुए हैं। हेलो नमस्कार।
1: हेलो गेस्टले
0: पिमलेटा लनांग से आला
1: समजी हेट जेंते मोवाल
0: लेस लादा दिचे तो निला जी सम देश जिपु गो निला
1: आइस मन पसा मजी हेट मैडम
0: लेस ला मन पसा मगतिन जिपु गो निला
1: चार सेप्टेम्बर कर तो
0: लेस एचिक देश पुना बनांग छंग मनो इनला नंग से आला
1: मेरा मोवाल जुल ला
0: लेस नंग से
1: यू वाज आर लपंग देश पुन तो सा एशिया गो मैडम इंडिन देमा
0: लेस ला
1: मैडम साइलम खवा जों पासांग लाम मा आम रिंग
0: ᱛᱚ ᱟᱛᱩ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱞᱚᱡᱟᱭ ᱟᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱡᱮᱱᱜᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱨᱤᱡᱤᱠᱟᱱ ᱵᱚᱠᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱛᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱱᱜᱟ ᱨᱚ ᱯᱚᱫᱟ ᱯᱩᱱᱟ ᱫᱟᱣ ᱥᱨᱤᱝ ᱯᱩᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢ ᱥᱨᱤᱝ ᱢᱮᱱ ᱱᱤᱢ ᱫᱚ ᱡᱤᱠ

0: हेलो, नमस्कार
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार
1: जी। मैम, हम धेमाजिया समझौना मिश्र की सबसे बिमोल बसुमतारी बोल रहा हूँ
0: जी
1: मैम।
0: जी जी आपका स्वागत है। बताइए, आज कौन सी गीत पेश कर सकती हूँ आपके लिए?
1: जी मैम, हमको आज तेरे नाम का गीत सुना दीजिए। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये गाना सुनना चाहता हूँ मैम।
0: जी जी जी ये गीत
1: और
0: तो
1: आज
0: मुझे भी
1: मैम
0: बड़े
1: मैं
0: पसंद
1: थोड़ा
0: है।
1: खेत में आया, फिर खेती पटा से लगाए, कल भी लग गया, अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, अभी आपके खेत में जो है क्या बोए हुए हैं?
1: हम लोग का ये धान का खेती लगाया है मैम।
0: धान का? अच्छा,
1: जी, थोड़ा
0: तो धान अभी पक गए?
1: पकने के लिए हो गया, और दूसरा और थोड़ा दुबई मारने के लिए है, और दुबई मारने के लिए आया था हम।
0: अच्छा विमल जी, आपके वहाँ तो गर्मी है जगह, तो साल में धान जो है कितने बार लगाते हैं?
1: जी मैम, हम लोग का इधर धान सिर्फ बसुर में एक बार लगाते हो हम लोग, और
0: अच्छा,
1: ये सब्जी वगैरह खेती कर लेता है।
0: तो सब्जियों में क्या क्या लगाते हैं?
1: सब्जी तो हम तो नहीं लगाते, मेरा टाइम इतना नहीं, सिर्फ घर में खाने के लिए लगा लेता हूँ।
0: जी जी
1: और ये
0: जी
1: गाना मैम
0: हाँ
1: सबसे
0: हाँ
1: पहले हम दोस्त के लिए दिल कर करना चाहता हूँ मैम।
0: हाँ जी हाँ जी
1: पहले आपको दिल कर रहेगा, और हम लोग का ईटानगर का आरजे, हम लोग का सबसे अच्छा प्यारा दोस्त है बुके बगरा सर, उसको भी दिल कर रहेगा, वो भी हम लोग का साथ सुनता है मैम। और रहेगा हम लोग का उमोल सुंदर है, फाइकोन मुंदर है, रोमेश
0: जी
1: पत्रो, दिवासी सजनपुरा, सुनीता बसुमतारी,
0: जी
1: सबको
0: जी
1: दिल कर रहेगा मैम।
0: जी जी जी तो विमल जी, क्या मैं इसी के साथ आपकी फरमाइश पेश कर सकती हूँ?
1: जी मैम जी,
0: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, कैसे
0: जी.
1: हैं आप?
0: नमस्कार जी. हम सभी अच्छे हैं और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे.
1: मैं भी अच्छी हूँ। मैं रमेश पत्रो गुजरात असम से बातें
0: जी
1: कर रहा हूँ।
0: जी जी रमेश पत्रा जी, आपका स्वागत है. बताइए, आज कौन सी गीत पेश करूँ आपके लिए?
1: मेरे लिए आज गाना है, रातों में जगाया नींदों को उड़ाया।
0: जी जरूर सुनवाएंगे.
1: और एक गाना डेडिकेट करता हूँ, मेरा श्रीमती है रुगनू पात्रो,
0: जी
1: माइकल मुंडा, अमोल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, गागे राभा, अंजलि बसुमतारी को
0: जी
1: डेडिकेट करता हूँ।
0: जी जी जी तो
1: और एक बात बताना चाहता हूँ, जब मुसीबत आ जाती है
0: जी
1: अचानक, तब तो हम सामने वालों से मदद मांगते हैं, मतलब
0: बिल्कुल
1: पड़ोसी से,
0: बिल्कुल.
1: और बाद में हमारा साथी लोग आते हैं। इसीलिए हम पड़ोसी से सदा मिलजुल कर रहना चाहिए।
0: जी जी जी बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया है. अक्सर हम सुनते हैं कि दूर के दोस्त से अच्छा हमारे रिश्ता जो है सामने, जो अपने आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनसे रखने चाहिए. जैसे आपने कहा
1: हाँ
0: कि मुसीबत के समय पर वही जो सबसे नजदीक हमारे रहते हैं वही काम आते हैं, है
1: हाँ
0: ना?
1: हाँ
0: जी
1: काम आते हैं,
0: बहुत सुंदर
1: बाद
0: संदेश.
1: में साथी लोग आते हैं।
0: ऐसा नहीं है कि दूर के दोस्त से आप रिश्ता नहीं रखना है, रिश्ता रखना है, लेकिन उनसे भी बढ़कर हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनके साथ होनी चाहिए, है ना? जी रमेश जी, बहुत सुंदर संदेश दिया. तो क्या मैं इसी के साथ आपकी
1: हाँ,
0: फरमाइश पेश कर सकती हूँ?
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत धन्यवाद आपका.

0: जी हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार के सुबह 10 बजे जरूर फोन कीजिएगा। हमारा फोन नंबर है 6033914908। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ ही अब आपके रेडियो दोस्त दोजी डोलमा को तकनीकी सहयोगी न्यूटन बोरा, अशोक बर्मन, हिमंता स्वर्गियारी और तानिंग तको के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक फोन इन है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के इस कार्यक्रम के संचालन एवं प्रस्तुतिकर्ता थे सुखशी दोर्जी डेमा। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग स्थित सामुदायिक संगठनों के सदस्यों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी PFR पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभावों को देखते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने जल सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संभावित डाउनस्ट्रीम आपदाओं के मद्देनजर हिमालय क्षेत्र की जल सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा करने वाली योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना बेहद जरूरी है। वहीं डीडी न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आम लोगों से प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR की प्रक्रियाओं की आगे बढ़ने की अपील की है ताकि इस राष्ट्रीय परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री वीराम भागे ने आज ICR और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू के मामलों में हालिया वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जन जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम के उपायों को मजबूत करने, व्यापक स्तर पर जांच, निगरानी और डेंगू की शुरुआती पहचान सुनिश्चित करने, डेंगू के अन्य क्षेत्रों में फैलाव को रोकने तथा IMC और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय मजबूत करने पर चर्चा की।

0: इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए करीबी निगरानी बनाए रखने और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने नागरिकों से भी सतर्क रहने, आवश्यक सावधानियां बरतने और डेंगू से संबंधित लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने की अपील की है। सरकार ने पेट्रोलियम संशोधन विधेयक 2026 के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सभी हितधारकों और आम लोगों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। सुझाव डाक के माध्यम से अथवा ईमेल के जरिए sodist-png@gov.in और richa.86@nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। टिप्पणियां और सुझाव की 30 अक्टूबर 2026 तक या उससे पहले भेजे जाने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पारे इंटीग्रेटेड रिजर्वेयर में 4 लाख से अधिक फिश फिंगरलिंग्स छोड़े गए हैं। इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन में वृद्धि करना तथा क्षेत्र में टिकाऊ आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम मत्स्य विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत जिला मत्स्य विकास अधिकारी यूपिया द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ निपको के प्रतिनिधि, 14वीं दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के विधायक के ओएसडी, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत अध्यक्ष तथा स्थानीय लोगों द्वारा भाग लिया गया। तालिहा में सेवा संकल्प अभियान के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता को सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक सुविधाजनक पहुंच उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में पंचायत नेताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों और आम लोगों ने भाग लिया। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभागों के माध्यम से उपलब्ध योजनाओं और लाभों एवं सेवाओं के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। शिविर के दौरान कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई तथा आवश्यक दस्तावेज और सुविधाएं भी आयोजित स्थल पर उपलब्ध कराई गई। 13वीं अंतर जिला कामिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज ईस्ट कामिंग जिले की सेपा में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में विधायक कुमार वाई, जिला खेल अधिकारी हागे मांका, यलंग तवांग इंटर डिस्ट्रिक्ट कामिंग बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन खोंजुजू, महासचिव रानीचिन नीमा और आयोजन समिति के अध्यक्ष गोके पोर्तोंग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। एशियाई खेल 2026 में भारत के आज शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 सहित कुल 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। तीरंदाजी में कंपाउंड वर्क में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। महिला टीम स्पर्धा में ज्योति वेनमन, चिकिता तापी नपार्थी और प्रीतिका प्रदीप की भारतीय टिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत ने कंपाउंड विश्व टीम स्पर्धा में दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। कंपाउंड पुरुष टीम ने भी चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और क्यानान चेन्नई ने ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Priya Badu. Chief Minister Pema Khandu held a meeting today with members of community-based organizations and government officials from Yingkyong in Upper Siang District. Discussions focused on development projects, especially the pre-feasibility report of the Siang Upper Siang multi-purpose project. In a social media post, Chief Minister emphasized the need for the effective implementation of plans prioritizing water security and the interests of local communities in light of potential downstream impacts across the Siang and Himalayan regions. He stressed that in light of potential downstream disasters, it is crucial to effectively implement plans safeguarding water security and the interests of local communities in the Himalayan region. Speaking to DD News, Khandu has appealed the public to allow the pre-feasibility report process to proceed so that the viability of this national project could be accessed. Minister for Health and Family Welfare B. Ram Wahage today held a review meeting with Health Department officials regarding a recent rise of dengue cases in the ICR and adjoining areas. The meeting deliberated on strengthening public awareness and preventive measures, rigorous testing, surveillance and early detection preventing further spread of dengue to other regions, and strengthening coordination with the IMC and other concerned departments. In the meantime, Health Minister has directed the officials to maintain close surveillance and ensure coordination.

श्रोता, अभी आपने देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने में फिल्म लक्ष्य से एक देशभक्ति गीत सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो आए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं फिल्म आपकी दीवानी से, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत के रचयिता है आनंद बख्शी और संगीत यह है राजेश रोशन ने। गीत की फरमाइश की है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कलकत्ता से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और भट्टा बजाज ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश आइए सुनते हैं फिल्म सफर से मुकेश की आवाज में। इस गीत को बोल दिया है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत की फरमाइश की है बुल्हाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सदैव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पटेल, अमोल मनकर, शोभाताई मनकर, शलोक और दीपाली ने।

आनंद बख्शी के रचे बोल पर आए सुनते हैं कार्यक्रम मैथिली फरमाइश का गीत फिल्म जब जब फूल खिले से। इस गीत की गायिका है लता मंगेशकर। गीत की फरमाइश की है मेहरनगर उमरखेत महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर राही, मिसेस सरिता गवानकर, प्रिंस एकांश गवानकर, बातलापुर मुंबई से सिद्धार्थ गवानकर, परिणीता गवानकर, लाटला टुक टुक गवानकर और आकर हाइट बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवानकर, सुमित गवानकर और मिस ध्वनि गवानकर ने

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म डिस्को डांसर से बप्पी लहरी के आवाज में। इस गीत की रचयिता अनजान और संगीत है बप्पी लहरी ने। गीत की फरमाइश की है पैगंग लहू गांव से पेमा डशी पसु कर्मु छुटन हम डशी नोरबू कारकी और पेमा चिरिंग ने।

श्रोता आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में एंटी फरमाइश का गीत फिल्म दीवाना से विनोद राठौर के आवाज में। इस गीत को बोल दिया है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। गीत की फरमाइश की है न्योमदुंग तवांग से संगीत सिरिंग और यूसर से सोनम छोटन ने।

गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी के वास्तव फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस तरह की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसके साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारे यादोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अभी तक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसन यादों, कुछ और लफ्जों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:30 पर तत्पश्चात

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं प्रशांत कुमार अपनी सहयोगी एकता थानी के साथ आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं।
1: नमस्कार प्रशांत। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
0: एशियाई खेलों के तीरंदाजी स्पर्धा में भारत ने जीते 3 स्वर्ण पदक। भारतीय महिला कंपाउंड, मिक्स्ड कंपाउंड और पुरुष कंपाउंड टीम ने रचा इतिहास।
1: नीरू ढांडा और किनान चेनाई की जोड़ी ने मिक्स ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
0: मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में जगह बनाई। प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीता।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई।
0: पुरुष और महिला स्क्वैश टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के 2 पदक सुनिश्चित।
1: और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी। एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जीत की सुनहरी इबारत लिखी। खेलों की बात करें तो किसी के लिए यह साधना है, किसी के लिए सपना, किसी के लिए जुनून तो किसी के लिए एक चुनौती। लेकिन खेल की परिभाषा चाहे जो भी हो, मकसद एक ही होता है, तिरंगे को दुनिया के खेल के नक्शे पर शान से फहराना। एशियाई खेलों में आज 4 बार ऐसा मौका आया जब भारतीय तिरंगा नीले आसमान पर शान से लहराया। हम सलाम करते हैं उन खिलाड़ियों की मेहनत और लगन को जिन्होंने सही मायने में भारत माता को गौरवान्वित किया।
0: जी हां एकता, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए। अगर हम आर्चरी की बात करें तो जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय महिला

0: कंपाउंड टीम, मिक्स्ड कंपाउंड टीम और पुरुष कंपाउंड टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश को पदक दिलाया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा विन्नम की भारतीय कंपाउंड आर्चरी टीम ने चीन को 234 के मुकाबले 238 से हराकर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा।
2: पृथिका रेडी, दिस शुड बी इन द बैक विद ज्योति लेफ्ट टू फायर दैट लास्ट एरो फॉर गोल्ड।
3: सेवन और मोर गोल्ड इन द बैग, कीप एन आई ऑन द क्लॉक, इट्स 10 टू फिनिश इट। इट्स बीन अ परफेक्ट एंड बाय द इंडियन टीम एंड दे क्लिंच गोल्ड इन एम्फैटिक फैशन।
1: फाइनल में शुरुआत में 30-28 की बढ़त लेने के बाद भारत ने अपनी बढ़त 3 पॉइंट तक बढ़ा ली। पृथिका और ज्योति परफेक्ट रही, दोनों ने पूरे समय 10 अंक बनाए। चीन ने अगले 3 एरो में 2, 10 और 1, 9 अंक हासिल किए। भारतीय तिकड़ी दूसरे रोटेशन में परफेक्ट 10 लगाकर 3 अंक से आगे हो गई। आखिरी 3 एरो में चीन ने भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए 3, 10 लगाए, लेकिन भारतीय तिकड़ी ने सभी 10 लगाकर परफेक्ट अंक किया और 238-234 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं महिला टीम के स्वर्ण जीतने के बाद राजेश जाधव और चिकिता तानिपार्थी की जोड़ी ने मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को एक रोमांचक शूट ऑफ में हराया। फाइनल में मुकाबला 157-157 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद भारतीय जोड़ी ने शूट ऑफ में साउथ कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया।
2: Yes, a 10 for Sahil also. And a 9 it is. That means this is yet another gold for Team India courtesy archery. This is a terrific start for the archers, by the archers. Second gold this morning confirmed. Thank you, Sahil Jadhav and Chikita.
1: इस जीत के साथ भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट का कोटा भी हासिल कर लिया है। चिकिता और साहिल ने शानदार शुरुआत की, दोनों तीरंदाजों ने दूसरे एंड में भी बेहतरीन निशाने लगाए, लेकिन मुकाबले का फैसला शूट ऑफ से हुआ। 157-157 से स्कोर बराबर होने के बाद शूट ऑफ में भारतीय टीम ने बाजी मारी और पदक जीत लिया। वहीं कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु की भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने भी चीन को हराकर तीसरा स्वर्ण पदक जीता। कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु की टुकड़ी ने एक रोमांचक फाइनल में चीन के जियाओ लियाओ, जिदयी लियू और जिंगयू शी को 238-237 से हराकर भारत के कंपाउंड तीरंदाजों के लिए गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की।
2: For India at the Asian Games 2026 was these three gentlemen who gave India the gold. Sahil Jadhav, Kushal Dalal and Ganesh Manirat.
1: भारतीय तीरंदाजों ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए अंक का अंतर सिर्फ 2 कर दिया। इसके बाद भारतीय तिकड़ी ने आखिरी 6 शॉट में बिना किसी गलती के 238 का स्कोर करते हुए पदक जीत लिया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
4: आइए सुनते हैं इस जीत के बाद ज्योति सुरेखा विन्नम ने क्या कहा।
5: बहुत खुशी है हमें, आज हमारा फर्स्ट मेडल मैच था आर्चरी में, हमने गोल्ड जीता। हमने एज ए टीम बहुत मेहनत करी है एंड आज सेमीफाइनल फाइनल दोनों मैच में भी अपने तरफ से पूरी कोशिश किया एंड अपने 100% दिया, तो हमारा हर शॉट अपना बेस्ट देने का ही कोशिश था।
0: आर्चरी से अब चलते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां भारत ने वहां भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। निशानेबाजी में आज भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीता। मिक्स ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को एक और पदक दिलाया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
6: That's another gold for India. What a day, Raman.
7: This edition of the Asian Games for India. Proud moment for the mixed team, Kanan Chennai and Neeru Danda. Gold for India.
8: नीरू और किनान की जोड़ी ने 34 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक देश के नाम कराया। वहीं कतर ने रजत और चीन ने कांस्य पदक जीता। नीरू का इस प्रतियोगिता में ये तीसरा पदक है। इससे पहले नीरू ने महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत और व्यक्तिगत ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। वो ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिक्स ट्रैप इवेंट के फाइनल में नीरू और किनान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली सीरीज में 6 अंक हासिल किए, जबकि दूसरी सीरीज में ये भारतीय जोड़ी 16 अंक हासिल करने में कामयाब रही। तीसरी सीरीज के अंत तक भारत ने 26 अंक हासिल किए और चौथी तथा आखिरी सीरीज में

0: 31 तक पहुंचाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रशांत, अब मुक्केबाजी पर बात कर लेते
2: जी
1: हैं।
2: एकता,
1: भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान की नताल्या बोगदानोवा को 3-2 से हराया। इस जीत के साथ ही लवलीना ने प्रतियोगिता में कम से कम अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया है। हालांकि भारतीय मुक्केबाज से देश को गोल्ड मेडल की आस है। लवलीना लगातार 2 एशियन गेम्स में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं।
2: और एकता, अगर बात की जाए, भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत लिया है। महिलाओं की 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में उन्हें चीन की यांग चेंगयू से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉक्सर ने क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान की मिसगोना समदोवा पर 5-0 की एकमत जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी और फाइनल में जगह बनाने की प्रबल दावेदार के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। उधर भारतीय पुरुष मुक्केबाज कपिल बुखारिया को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। कपिल को 90 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के तुर्बेक के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय पुरुष मुक्केबाज अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम के फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं नरेंद्र ने सेमीफाइनल मैच हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नरेंद्र को सेमीफाइनल में ओरलबे ने एक तरफा अंदाज में 0-5 से हराया। वहीं महिला मुक्केबाज परवीन हुड्डा 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की ली शू यू को 5-0 से शिकस्त दी।
1: प्रशांत, अब बात करेंगे महिला हॉकी की।
2: जी,
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। जापान के काका मिघारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से मात देकर गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई है। 1982 के बाद से महिला हॉकी में अपना पहला एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश कर रही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना शानदार रिकॉर्ड बनाए रखा है।
2: और एकता, इस नतीजे ने एशियन गेम्स में महिलाओं की हॉकी में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के भारत के 44 साल के इंतजार को खत्म करने की उम्मीद को जिंदा रखा है। भारत पूल चरण में उज्बेकिस्तान को 19-0, इंडोनेशिया को 17-1 और थाईलैंड को 20-1 से हराने के साथ साथ मेजबान जापान को 3-1 और सिंगापुर को 7-0 से मात देकर बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंचा था। अब भारतीय टीम शुक्रवार को फाइनल में चीन का सामना करेगी।
1: प्रशांत, अब चलते हैं स्क्वाश की तरफ। एशियन गेम्स 2026 में आज भारत की पुरुष और महिला स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत के लिए 2 पदक तो अब पक्के हो गए हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: शीर्ष वरीयता और मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कुवैत को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद भारतीय महिला टीम ने भी सिंगापुर के खिलाफ 2-0 की आसान जीत दर्ज की। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत की दोनों टीमें अंतिम 4 में पहुंच गई और स्वर्ण पदक की दौड़ में बनी हुई हैं। भारतीय पुरुष टीम ने चीन पर 3-0 की दमदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जिसमें सूरज कुमार चंद, वीर चोटरानी और विलावन सेंथिल कुमार ने अपने अपने मैच जीते। दूसरा गेम हारने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी की और 34 मिनट में 12-10, 8-11, 11-0 और 11-5 से जीत हासिल की। तन्वी ने शुरुआती सिंगल्स मैच में औ ये ओंग वाई लीन के खिलाफ भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। मुकाबला पहले 3 गेम तक बराबरी का रहा, लेकिन चौथे गेम में तन्वी ने बढ़त बनाते हुए 32 मिनट में 11-6, 4-11, 15-13, 11-1 से जीत हासिल की। इसके बाद अनाहत सिंह ने दूसरे मैच में भारत के लिए जीत पक्की की और टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए अब चलते हैं कुश्ती की तरफ। एशियन गेम्स में आज सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन रॉबर्ट्स के खिलाफ 9-0 से जीत हासिल की। इसी के साथ सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सुनील ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवा लिया है। 27 वर्षीय सुनील एशियन गेम्स में 2 ग्रीको रोमन रेसलिंग मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं। यह ब्रॉन्ज मेडल उनके कैरियर में एक और

0: और अध्याय जुड़ता है जिसमें पहले से ही 6 एशियन चैंपियनशिप मेडल शामिल हैं। अब सुनील कॉन्टिनेंटल गेम्स में 1 से ज्यादा ग्रीको रोमन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
1: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। गुवाहाटी में दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच वेस्टइंडीज और भारत के बीच जारी है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 25 ओवर में बिना किसी नुकसान के 250 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 82 गेंद पर 142 रन बनाए और रोहित शर्मा 71 गेंद पर 99 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। कप्तान शुभमन गिल की बात की जाए तो उन्होंने पिछले मुकाबले में भी शतक लगाया था। अभी वे 6 छक्का और 17 चौके लगाकर 173.2 के स्ट्राइक रेट के साथ क्रीज पर मौजूद है। वहीं अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा 71 गेंद का सामना कर 99 रन बनाकर 10 चौके और 6 छक्के की मदद से क्रीज पर मौजूद है। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए। उधर भारत की ओर से कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और गुरनूर ब्रार ने 2-2 विकेट हासिल किए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। वहीं जी
0: प्रशांत, क्रिकेट की बात चल रही है तो रैंकिंग की बात भी कर लेते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शतकीय पारी खेलने का इनाम विराट कोहली को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में मिला है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में कोहली ने एक पायदान की छलांग लगाई है और वह अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। कोहली से आगे वनडे रैंकिंग में अब सिर्फ शुभमन गिल हैं, जो पहले एक दिवसीय मुकाबले में शतकीय पारी खेलकर अपनी बादशाहत को बरकरार रखने में सफल रहे हैं। रोहित शर्मा की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 4th नंबर पर बने हुए हैं।
1: और उधर भारत के सुमित नागल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और एशियाई खेलों की बात की जाए तो पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
3: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
2: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस

0: जिसका मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चुनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल

किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया, वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27

0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपये पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oilseeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intra-state power transmission network, also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies arrest 5 Pakistani nationals in a joint operation, seize 526 kilograms of drugs from Iranian boat. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. Women's hockey team storms into final. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees and wheat by 25 rupees per quintal.
3: Rabi season ki MSP badhane se
4: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.